0: Asia Business. It's all the business news you need.
1: Trading will be closely watched.
2: The tax hike could curb consumer spending.
3: Makes it the world's second biggest IPO this year.
4: Affected by uncertainties in the US trade war.
5: Japan and the word sale.
6: Developments on the US-China trade front.
7: We saw markets react unfavorably.
8: You know, markets continue to grapple with uncertainty.
9: From lawyers representing an unnamed interested party.
0: Asia Business. 35 minutes.
10: Call mil jayega, kuch bhi ho jata hai. सबसे और ये करीबन जो जब तक ये कूलिंग नहीं आता, फोन कूल नहीं होता, बिल्कुल ठंडा नहीं होता, तब तक आधा घंटा लग जाए, एक घंटा लग जाए, वो अपना काम नहीं करेगा। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम कुछ काम ही नहीं कर सकते।
0: Temperatures in Delhi regularly hit above 40 degrees Celsius in the summer. But the overheating phone is only the first way the heat cuts into Vijay's earnings. When temperatures climb, business slows too.
10: एक तो दोपहर में राइडर को राइड नहीं मिलती हैं, कम राइड मिलती हैं, और राइड मिलती हैं तो उसमें क्या है, जो बैठ के जा रहा है गर्मी उसके लिए भी है, तो कंपनियां क्या करती है, प्राइस घटा देती है। माने एक कस्टमर अगर 10 किलोमीटर जा रहा है जहां 90 रुपए का चार्ज है, तो वो ये 70 रुपए में ले आते हैं, गर्मी है इसलिए।
0: When temperatures climb, he gets fewer passengers. And even when they book, Vijay says fares fall. The hotter the day, the less each trip pays. So during the hottest months, his income has plunged by almost 80%. And staying on the road comes at a cost.
10: देखिए, राइड चलाते समय जो टेम्परेचर ऐसा होता है, आप अब मैं एक अंदाजा क्या बताऊं, जलती हुई भट्टी जैसे कहते हैं, लावा, लावा देखा होगा आपने। जो हम बाइक चलाते हैं ना, जिस हिसाब से गर्मी और लू चल रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, हम लावे के अंदर घुस रहे हैं। अब मेरी फीलिंग को आप समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि लंबा रूट मिल जाता है, जगह जगह हमारे बीच रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलता, और जो हम पानी साथ में लेके जाते हैं वो भी इतना उबल जाता है, आप उससे हाथ नहीं धो सकते, पियेंगे क्या।
0: इवन व्हेन हिज शिफ्ट एंड्स, दिस लिटिल रेस्पाइट।
10: आप देखिए, हम 3 से 4 घंटे गर्मी में गाड़ी चलाते हैं। एक नॉर्मल आदमी, जो आम आदमी होता है, वो 4 घंटे 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब घर आता है, अब नॉर्मल घरों में क्या होते हैं, पंखे। अब इतने टेम्परेचर में जब छत खोल रही होती है ना, तो पंखे कूलिंग नहीं देते, वो भी आग फेंकते हैं, ठीक है। अब वो 4-5 घंटे जॉब करने के बाद आता है और यहाँ रेस्ट करता है, तो वो चैन की नींद नहीं ले पाता।
0: So Vijay hasn't just changed how he works, he's changed when he works. He now avoids the hottest part of the day, but working fewer hours also means earning less. So this year, he made a bigger change. From 7 a.m. to 3 p.m., Vijay works as a security guard. When the temperature drops, he switches to ride hailing. The security job doesn't pay more. In fact, it's still outdoors, but unlike ride hailing, it guarantees an income every month. That's become more valuable than flexibility.
10: Ola Uber chalane ke alawa ye jo private job maine join ki hai, iska main maqsad jo tha, mera motive tha ki hum jab 12 ghante ride chalate hain to compulsory nahi ki hum 1200 se 1500 ki income kar le. माने 70% माने 30% चांस है कि हम 1200-1500 का काम कर लेंगे, लेकिन 70% चांस है कि वो 600 तक ही जाए। तो मेरा मकसद था, मैं ये सोचा करना चाहता था कि मैं एक फिक्स अमाउंट कहीं एक सेट करूं, जिससे मेरी फैमिली में मुझे कोई दिक्कत ना आए, कि मुझे ये पता रहे कि एक फ़िक्स अमाउंट यहाँ से मेरा आएगा, और जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ वो मेरे एक्स्ट्रा इनकम कहलाएगी। इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन की।
0: Between Vijay's two jobs and his wife's income, the family brings home around 40,000 rupees each month, around $420. But after food, fuel, housing and bike loans, school fees and medication for his elderly mother, there's often nothing left.
10: दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां होती हैं ना, जो पीछे बैकग्राउंड फैमिली बैठी है उसके बारे में सोच के तो फिर गर्मी सर्दी अब कुछ नजर नहीं आता।
0: Researchers tracking more than 1,000 gig workers in India say absenteeism rates go up on hotter days, and it squeezes workers from both sides. They earn less because they work fewer hours, but they also spend more.
11: So they have to spend a lot more on, for instance,